चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए ही की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। जब वह दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर डेरा डाला और आवाजाही के रास्ते रोक ली। वह लगातार 6 माह तक डेरे डाले रहा। इस दौरान न खाने पीने की कोई भी चीज बाहर से आ सकती थी, न ही जा सकती थी। समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। आखिर ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या करेगा? आगे की कहानी बताऊंगी आपको एक ब्रेक के बाद। तब तक आपके लिए एक बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन रेडियो 90.8 FM 24 पर। आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में, सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं, कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किले में रसद की कमी हो गई थी, प्रजा में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए ऐसे में राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी से खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता है उससे पहले ही रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों के साथ ने जौहर कर लिया था। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर हो गई। उसने खुद को खिलजी से बचाने के लिए खुद का आत्मदाह कर लिया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्ते लागू।
2: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
6: क्यों जी?
5: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप, और सेफ्टी की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
6: हाँ जी
5: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
5: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
5: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 90 3496973 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
13: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
14: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
13: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
15: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
16: हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का 90.8 FM 24 पर। मैं हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं लेकर आई हूँ एक अनकही कहानी, आरजे भावना की जवानी। तो इस अनकही कहानी में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े जौहर के बारे में, जिसमें एक रानी के साथ हजारों शत्रानियों ने आत्मदाह कर लिया। रानी और हजारों शत्रानियों ने जौहर में कूद कर खुद को आग के गले लगा लिया। आखिर क्यों रानियों ने जौहर किया, क्या कारण था, कौन थी रानी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल शो की शुरुआत करते हैं बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के साथ। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्री राम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। Armorzen, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो प्रज्ञान, आरजे भावना के साथ। तो हम बात कर रहे थे जौहर के बारे में, कौन थी वो रानी जिसने जौहर किया। इतिहास में वैसे तो जौहर की गाथा भरी पड़ी है। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। यह वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों ने जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर वह जौहर कुंड है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों शत्रानियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र किया है। रानी ने क्यों जौहर किया और रानी कौन थी, किसकी पुत्री थी, किसकी पत्नी थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
4: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24 और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं हूँ आपके साथ RJ भावना। तो आज की इस अनकही कहानी में हम बात कर रहे थे रानी पद्मिनी। कौन थी रानी पद्मिनी? रानी पद्मिनी का मूल नाम रानी पद्मावती था। वह सिंगल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद ही खूबसूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों ने इस तथ्य को लेकर मतभेद भी किया है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वह चित्तौड़गढ़ के किले को क्यों पाना चाहता था? उसका क्या मकसद था? आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए, यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
17: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
18: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
17: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
18: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए बी आई

0: 4001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान आरजे भावना के साथ। तो चित्तौड़गढ़ के किले में ऐसी क्या खास बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसे पाना चाहता था? तो मैं बता दूं आपको, चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें व्यापारिक महत्ता बहुत ही अधिक थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि सभी के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही होकर निकलते थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी एक मुगल शासक था। चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह करते रहे। ऐसे में खिलजी राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए ही की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। जब वह दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर डेरा डाला और आवाजाही के रास्ते रोक ली। वह लगातार 6 माह तक डेरे डाले रहा। इस दौरान न खाने पीने की कोई भी चीज बाहर से आ सकती थी, न ही जा सकती थी। समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। आखिर ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या करेगा? आगे की कहानी बताऊंगी आपको एक ब्रेक के बाद। तब तक आपके लिए बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन रेडियो 90.8 FM 24 पर, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कम्प्लीट

0: हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम,
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
4: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान, तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में, सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
7: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
8: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं, कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
7: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM, 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM, 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किले में रसद की कमी हो गई थी, प्रजा में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, राजा रतन सिंह ने बहादुरी से खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहास के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता है, उससे पहले ही रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों के साथ रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों ने जौहर कर लिया था। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर हो गई। उसने खुद को खिलजी से बचाने के लिए खुद का आत्मदाह कर लिया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 90 3496971 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
13: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
14: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
13: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
15: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
16: हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का 90.8 FM 24 पर। मैं हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं लेकर आई हूँ एक अनकही कहानी, आरजे भावना की जवानी। तो इस अनकही कहानी में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े जौहर के बारे में, जिसमें एक रानी के साथ हजारों शत्रानियों ने आत्मदाह कर लिया। रानी और हजारों शत्रानियों ने जौहर में कूदकर खुद को आग के गले लगा लिया। आखिर क्यों रानियों ने जौहर किया, क्या कारण था, कौन थी रानी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल शो की शुरुआत करते एक बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के साथ। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MT रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो प्रज्ञान, आरजे भावना के साथ। तो हम बात कर रहे थे जौहर के बारे में, कौन थी वो रानी जिसने जौहर किया। इतिहास में वैसे तो जौहर की गाथा भरी पड़ी है। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। यह वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों ने जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर वह जौहर कुंड है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों शत्रानियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र किया है। रानी ने क्यों जौहर किया और रानी कौन थी, किसकी पुत्री थी, किसकी पत्नी थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसिस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, मल्टी स्पेशलिटी, सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784338633।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
4: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24 और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं हूँ आपके साथ आरजे भावना। तो आज की इस अनके ही कहानी में हम बात कर रहे थे रानी पद्मनी। कौन थी रानी पद्मनी? रानी पद्मनी का मूल नाम रानी पद्मावती था। वह सिंगल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मनी बेहद ही खूबसूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों ने इस तथ्य को लेकर मतभेद भी किया है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वह चित्तौड़गढ़ के किले को क्यों पाना चाहता था? उसका क्या मकसद था? आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललंकार CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड, नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए, यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
17: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
18: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
17: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
18: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है। सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
19: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
20: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान RJ भावना के साथ। तो चित्तौड़गढ़ के किले में ऐसी क्या खास बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसे पाना चाहता था? तो मैं बता दूं आपको, चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें व्यापारिक महत्ता बहुत ही अधिक थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि सभी के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही होकर निकलते थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी एक मुगल शासक था। चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह करते रहे। ऐसे में खिलजी राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए ही की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। जब वह दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर डेरा डाला और आवाजाही के रास्ते रोक ली। वह लगातार 6 माह तक डेरे डाले रहा। इस दौरान न खाने पीने की कोई भी चीज बाहर से आ सकती थी, न ही जा सकती थी। समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। आखिर ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या करेगा? आगे की कहानी बताऊंगी आपको एक ब्रेक के बाद। तब तक आपके लिए बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन रेडियो 90.8 FM 24 पर, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में, सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं, कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट।

0: यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक एल और डायलिसिस, सभी बड़े टीपीए, कैशलेस आरजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआईसी, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किले में रसद की कमी हो गई थी, प्रजा में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी से खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहास कारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता है उससे पहले ही रानी पद्मिनी और हजारों शत्रानियों के साथ ने जौहर कर लिया था। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर हो गई। उसने खुद को खिलजी से बचाने के लिए खुद का आत्मदाह कर लिया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप,
7: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 90 3496973 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
13: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
14: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
15: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
14: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
16: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
17: हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का 90.8 FM 24 पर। मैं हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। मैं लेकर आई हूँ एक अनकही कहानी, आरजे भावना की जबानी। तो इस अनकही कहानी में हम बात करेंगे इतिहास के

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
5: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
4: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
5: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
6: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
7: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
8: अरे कहाँ जा रही हो?
9: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
8: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
9: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन। वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
10: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
11: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: हेलो जी, गुड वर्ली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है, और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RG यश, यानी कि आपका रेडियो दोस्त यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर के आता है। लेकिन साहब, आपको बता दें कि सुबह सुबह का वक्त है, तो सुबह सुबह लेकर के आऊंगा बहुत ही चटपटी सी बातें, मजेदार सी बातें, मस्ती वाली बातें। वो इसलिए भी क्योंकि भाई साहब, जरूरी है कि आप ऑफिस जाते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो, और जब आप फ्रेश मूड में ऑफिस पहुंचेंगे तो काम करने में आपका मन लगेगा, और जब काम करने में आपका मन लगेगा तो आपके बॉस आपसे खुश होंगे, और जब आपके बॉस आपसे खुश होंगे तो पैसा मिलेगा भाई साहब, पैसा। जी हाँ साहब, लेकिन आपको बता दें कि आज बहुत ही ढेर सारी न्यूज अपडेट्स भी आपको देने वाला हूँ, प्यारी प्यारी सी न्यूज आपको बताने वाला हूँ, और भी ढेर सारी बातें आपसे करूंगा, चाहे वो भिवाड़ी शहर से जुड़ी हो, भिवाड़ी शहर के बाहर से जुड़ी हो, या फिर चुनावी मुद्दे ही क्यों ना हो, लेकिन बातें तो मैं लेकर आऊंगा ही। साथ में भाई साहब, हिंदुस्तान में इस समय क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप कार में बैठे हैं तो प्लीज फटाफट से सीट बेल्ट को जरा सा टाइट कर लीजिए, क्योंकि आपकी कार में आपकी जिंदगी का सहारा आपकी सीट बेल्ट ही होती है मेरे दोस्त। बस मुझे ज्यादा ध्यान से मत सुनिए, हाँ लेकिन सुनते रहिए। चलिए, यहाँ पर तो मैं अपनी बातें करता हूँ बंद और गाना करता हूँ शुरू, क्योंकि भाई साहब मनोरंजन का है एक ही बहाना, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें, एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। और भाई साहब हाँ, सुबह सुबह का वक्त है तो बस चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा को करेंगे जारी, तो बस चाय का कप उठाइए, बिस्किट लीजिए और डुप से डुबोइए, और खाते हुए एंजॉय कीजिएगा मेरी इन प्यारी प्यारी सी बातों। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस गाने को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
6: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
8: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर,
6: दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
8: अरे कहाँ जा रही हो?
9: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
8: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
9: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
8: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
10: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
14: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो बहुत ही ढेर सारी बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है तो गर्मी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी चाय तो पीते रहिए। कहते हैं ना कि लोहा लोहे को ही काटता है, तो इसीलिए चाय गर्मी को मारेगी और गर्मी से हम बचते रहेंगे, तो चाय पीते रहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाई साहब, अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की दशा देखी जाए तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर बारिश बंद हो चुकी है एकदम ही। तो भाई साहब, फिलहाल तो मैं आपको बताऊं, क्या ही बताऊं, यही बताऊंगा कि भाई साहब टेम्परेचर क्या कह रहा है। तो भाई साहब, टेम्परेचर कह रहा है, अगर बात की जाए उसी वक्त की जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक की, तो वैसे 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसके बाद 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक की बात की जाए तो भाई साहब टेम्परेचर 34, 35 और 36 डिग्री सेल्सियस तक जाने के पूरे चांस है। उसके बाद 37 तक भी जाने के पूरे चांस है। लेकिन अगर शाम की यानी कि रात की बात की जाए तो लगभग 29 और 28 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जा पहुंचेगा। मतलब दोपहर में तो गर्मी गर्मी गर्मी है, गर्मी गर्मी गर्मी, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। अब ना पूछो भाई साहब, इस बदलते मौसम में भी मेरा तो पसीना छूट गया। चलिए खैर, पसीना तो छूटता रहेगा, लेकिन यश तो यही कहेगा कि इस बदलते मौसम में थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही अपने भाई यश को प्यार देते रहिए और साथ में सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 34। बस यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। बस फिलहाल अभी बातें बहुत ढेर सारी बाकी है, अभी तो न्यूज अपडेट्स भी बाकी है। बहुत ही प्यारी सी न्यूज दूंगा, बहुत ही मजेदार सी न्यूज दूंगा। फिलहाल एंजॉय कीजिएगा गाने को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना।
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
5: तो कब चले?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 and 9784333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
9: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
9: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
9: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
11: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: सनम
1: जी हाय, एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग है। नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक बड़ी ही प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है, और बड़ी ही दूर से रिक्वेस्ट आई है, बड़ी ही प्यारी सी गाने की रिक्वेस्ट आई है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि गाना कौन सा है। गाना है भाई साहब वही हल्के।

पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब हो गया। जी हाँ, बड़ा ही प्यारा सा गाना है, बड़ी दूर से रिक्वेस्ट आई है भाई साहब। तो ये रिक्वेस्ट आई है अलवर से, और ये रिक्वेस्ट जिसकी तरफ से आई है उनका नाम है भारत सिंह जी। तो चलिए भाई साहब, भारत सिंह जी की तरफ से जब ये रिक्वेस्ट आ ही गई है तो क्यों ना इस गाने को प्ले कर दिया जाए रेडियो पर। तो भारत सिंह जी, आपकी रिक्वेस्ट आप तक पहुँचने ही वाली है रेडियो के माध्यम से फिलहाल। तो मेरे प्यारे से लिसनर्स, आप लोगों से भी यही कहना है कि भाई साहब सबसे पहले तो इस गाने को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाला गाना है, बड़ा ही प्यारा सा गाना है, बड़ा ही मजेदार सा गाना है। हाल क्या है दिलों का। जी हाँ, मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। फिलहाल तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.4।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
10: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
11: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
12: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, बात कुछ ऐसी है कि अब वक्त हो चला है बहुत ही बड़ी बड़ी खबरों का। हालांकि इसमें से एक खबर तो मैं आपको कल ही बता चुका था शाम को, लेकिन फिर से बता देता हूँ चूंकि खबर बड़ी है इसलिए। तो चले भाई साहब, शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तीन बड़ी खबरों से। सबसे पहली खबर बिहार से है। बिहार के नालंदा से सरकारी स्कूल के मिड डे मील को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों को परोसे गए खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर पहुंच गया है। खाना खाने के बाद लगभग 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की बात कही गई है। बच्चों की थाली में अगर खाने की जगह लापरवाही पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं पूरी व्यवस्था पर उठता है। तो क्या है ये व्यवस्था, कैसी है ये व्यवस्था, और जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठी और डंडे चलाए जाते हैं, लाते चलाई जाती हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगाए गए कुछ अनधिकृत ढांचों और बैरिकेडिंग को हटाया गया है। यह कार्यवाही ऐसे समय हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर गतिविधियां चर्चा में हैं। इस पूरे मामले पर अब दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। और तीसरी बड़ी खबर दिल्ली की वोटर लिस्ट की है। बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी होगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा और 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होने की जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों, ये थी देश की तीन बड़ी खबरें। खबर वही, अंदाज अपना। बस आप सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
6: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
8: मतलब?
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
9: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
10: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
11: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
5: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
12: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
13: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
12: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
13: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
14: तो लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, बात कुछ ऐसी है कि अब वक्त हो चला है हमें अपने साथ में मेहमान को लेकर के आने का। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हम बातें करेंगे आपके पैसे को किस तरीके से डबल करवाया जा सके या फिर आपके पैसे को किस तरीके से बचाया जा सके। जो आपका पैसा आपके पास आपकी पॉकेट में नहीं बच पाता है, उसे कैसे सही जगह पर यूज करके उस पैसे से कुछ पैसा लेकर के आया जा सके, ये सारी बातें आपको आज बताएंगे। कुल मिलाकर के थोड़ी सी आज ये वाली बातें होंगी कि भाई साहब कैसे आप फाइनेंशियल ठीक रह सकते हैं, कैसे आपके फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो सकते हैं, और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे। हमारे मेहमान जो हमारे साथ में होंगे वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे से पैसा आपको हासिल करना है, वो ढेर सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि भाई साहब पैसा वाली बात है। हाँ, तो पैसा वाली जब बात आ जाती है तो जरा सा इंतजार करना होता है। जी हाँ, क्योंकि पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। जी हाँ, ये एक बड़ा ही प्यारा सा गाना है, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। बड़ा ही प्यारा सा गाना है, लेकिन इस गाने से हमें कोई मतलब नहीं है, आपके पैसे को डबल करवा कर ही मानूंगा। चलिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। मैं शो गया और शो आया लेकर, और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। फिलहाल कहीं मजा ही, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983-04010 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी?
9: क्या आपने लगाई PNG?
10: हाँ जी।
9: क्यों जी?
10: क्योंकि PNG के फायदे हैं।

0: किचन तो स्टॉप और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: सो हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लीजिए एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका रेडियो दोस्त यश। और भाई आपको तो पता है कि इस भागम भाग युग में अगर पैसा ना हो तो भैया जिंदगी अधूरी है, लेकिन पैसा हो और सही जगह पर खर्च ना हो तब भी जिंदगी अधूरी है, और ये दोनों ही हो तब तो सबसे ज्यादा जिंदगी अधूरी है। मतलब इन्हीं सारी चीजों पर आज हमने बात करने के लिए, तो दोस्तों हमारे साथ चर्चा में होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट नवीन चंद्र गैरोला जी। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है?
7: जीवन में अपने सारी चीजों को सही ढंग से चलाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम एक प्लान जर्नी करते हैं तो हर चीज, जैसे कहीं भी जाए तो आइटिनरी बनाते हैं, परफेक्ट होटल, परफेक्ट चीजें, ताकि सही से सारी चीजें हम एंजॉय कर पाए। उसी तरह लाइफ को भी हमें एंजॉय करना चाहिए, और लाइफ को एंजॉय हम तभी कर पाएंगे जब लाइफ के सारे गोल हमारे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसी प्रोटेक्शन का नाम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जैसे बच्चों के एजुकेशन, उनकी मैरिज, इसके अलावा हमारे रिटायरमेंट, ये कोई हमारे एस्पिरेशनल गोल हो, जैसे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदने हैं, तो इस तरह की चीजों को प्लान करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है।
6: जी क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को बता दिया। और आज से ये जो क्वेश्चन मेरे जहन में चल रहा था या फिर हमारे लाखों लिसनर्स के जहन में चल रहा था, उन सारी चीजों को आज आपने क्लियर कर ही दिया है। सर इसी कड़ी में मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। सर अगर किसी व्यक्ति की अभी नई नई नौकरी लगी हुई है और उसकी सैलरी लगभग 30,000 रुपए है, तो वो कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है? सर
7: बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर शुरुआत से जिसने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तवज्जो दे दी
6: जी,
7: तो वो जीवन में बहुत अच्छा करेगा
6: जी।
7: हम जब भी शुरुआत होती है तभी उनको कहते हैं कि अब से आपने इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर देनी है, ताकि अगले 15 साल में अगर आप अपनी सैलरी के बराबर ऐसे एसेट्स बना सके जो उतना कैश फ्लो आपको दे
6: जी,
7: तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके लिए शुरुआत ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे 30,000 रुपए आप कमा रहे हैं तो आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को भी आपके शॉर्ट टर्म को भी कर सकती है, आपके कंटिन्जेंसी फंड को भी टैकल कर सकती है। इसके अलावा आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लेनी है
6: जी,
7: ताकि आपके कोई भी मिस एडवेंचर लाइफ में कुछ भी हो तो उस केस में आपको लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी बीमारी के केस में आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करेगा। ये तीन चीजें जिंदगी में हमेशा कर लेनी। लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक SIP आपने कर ली
6: जी,
7: तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप अपने SIP बढ़ाते जाओ, अपने डिफरेंट गोल के लिए उन SIP को असाइन करते जाओ। आप देखेंगे कि 10-15 सालों में एक बहुत अच्छा एसेट आप जोड़ लेंगे अपने लिए।
6: जी, तो दोस्तों सुना आपने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, एक SIP जरूर करना है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ये भी आपको करवा लेना है। तो बस ये 2-3 चीजें आपको जरूर करवाना है। और जिंदगी में पैसा तो भाई साहब है ही, पैसे का तो पूरा खेल ही है, तो पैसा बचा करके कैसे चलना है, उन सारी चीजों पर अब हम बात कर रहे थे। अभी और भी ढेर सारी बातें रहेंगी जारी, आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.4 यश यू गया और यू आए लेकर और भी ढेर सारी बातें।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपने जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
7: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
9: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
10: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4, भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
11: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
12: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
11: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
12: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916, 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आज चर्चा चल रही है आपके पैसे को किस तरीके से सही जगह पर लगवाया जाए ताकि आपको पैसे से पैसा प्राप्त हो सके, और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं नवीन चंद्र गैरोला सर। सर, वैसे अगर मेरे को आप जैसा टीचर पहले मिला होता तो शायद आज मैं करोड़पति होता। सर, एक आपने वर्ड का यूज किया है सर, SIP। तो सर, मैं चाहूंगा कि मेरे जो लिसनर्स आपको लाखों की तादाद में सुन रहे हैं, उन्हें सर SIP का मतलब आप बताएं सर।
14: ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम उसको बोलते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक तरीका तो ये होता है, मैं सोचता हूँ जिस दिन मेरे पास इकट्ठा पैसा हो जाएगा उस दिन मैं पैसा जमा करूँ। लेकिन आपने मुझे सिचुएशन दी कि 30,000 रुपए मंथली कमाते हैं, इसका मतलब हर महीने उनके पास कैश इनफ्लो है।
13: बिल्कुल।
14: तो हर महीने अगर वो जमा करते जाए तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते जाए, हम ये कहना चाहते हैं हर महीने वो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते जाए थोड़ा थोड़ा, जैसे 5,000 रुपए भी लगा ले तो साल के अंत में 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। 10,000 करें तो 120,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे। जबकि अगर वो सोचते रहे कि नहीं मैं 120,000 इकट्ठा करूंगा, उसके बाद करूंगा, तो हो सकता है कि जितनी कमाई आई वो खर्च हो गई और वो 120,000 रुपए जो जमा हो सकता था वो नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि आप धीरे धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए, दैट इज कॉल्ड SIP।
13: जी, समझ गया सर, समझ गया। और सर, मेरे बहुत सारे लिसनर्स जो इस चीज को जानना चाह रहे थे वो भी जान गए होंगे सर। सर, इसी में मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आता है सर, कि मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 नहीं है, आम व्यक्ति है, मजदूरी वगैरह करते हैं, और अगर वो चाहें कि मैं SIP वगैरह करूं सर, तो उनके लिए क्या प्रावधान है सर, क्या सलाह आप देना चाहेंगे उन्हें?
14: हाँ, हर कोई कर सकता है। आप तो 100 रुपए से भी पर मंथ आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया, आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, जितनी आपकी देखो जितना इनकम हो उसी हिसाब से प्लानिंग बनाई जा सकती है, उसी हिसाब से आपके खर्चे डिसाइड होते हैं, उसी हिसाब से आप गोल बनाते हो, तो उसी हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जरूर थोड़ा थोड़ा बचाएं, अमाउंट कितना भी हो लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो कुछ न कुछ इकट्ठा जरूर होगा और आपके इमरजेंसी में वो काम आएगा।
13: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही ढेर सारी बातें आपने बहुत ही अच्छे से समझा दी है, और खास तौर पर हमारे लिसनर्स को जो सुनना था, जो समझना था, वो समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास 1,00,000 का महीना ही आना चाहिए या 50,000 का महीना ही आना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपए महीने भी कमाते हैं तब भी आप SIP शुरू कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं, और बाद में वो पैसा आपके काम आ सकता है। आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, 200, 500, 1,000, 10,000, 5,000, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप बचा सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, और बाद में ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। तो मैंने सोचा कि भाई साहब, आज आपको ये सारी बातें बता दें, क्योंकि पूरा खेल ही तो पैसे का है। अगर पैसा बचेगा तो आपकी इज्जत रहेगी। ऐसा अब इस भागम भाग दुनिया में हो गया है, इस भागम भाग युग में हो चुका है कि पैसे को तवज्जो बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी कड़ी में मैं लेकर के आऊं आप लोगों के लिए बहुत ही ढेर सारी ऐसी बातें जिनसे आप भी अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और पैसे से पैसा बना सकें। चलिए, बहरहाल हमारा और सर का सफर आप लोगों से यहीं तक था, तो कल फिर मिलूंगा किसी और नए मेहमान के साथ लेकर के और भी ढेर सारी बातें। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
6: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
5: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
6: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
8: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
8: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम साढ़े चार से साढ़े छह बजे तक गुरुवार अवकाश।
9: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
10: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
9: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
3: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
12: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
13: अरे कहाँ जा रही हो?
14: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
13: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
14: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
13: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता, जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावलो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
15: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
16: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
17: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
16: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
18: दूसरी ब्रांच A50, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
19: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बन

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट।
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल

0: जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हजर आजाद भारत का आजाद लड़का, यानी कि आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका रेडियो दोस्त यश। और भाई साहब, हमने आपको बताया था कि आज हम पूरे दिन की खबरों की बात करेंगे, यानी कि खबरें होंगी आजादी से जुड़ी हुई, हमारे देश से जुड़ी हुई। तो चलिए अब आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं लाल किले पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। यह उनका लगातार 13वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत के लक्ष्य, युवाओं की भूमिका और देश की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आज का दिन सिर्फ आजादी का उत्सव नहीं बल्कि आने वाले भारत की दिशा और संकल्प का भी दिन है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। और भी ढेर सारी खबरों को लेकर के आऊंगा आप तक, लेकिन उससे पहले आपको एंजॉय करना होगा इस देशभक्ति गाने को, क्योंकि आज आजादी का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, हिंदुस्तान का हर नागरिक मना रहा है, क्योंकि हम आजाद हैं। और आजाद भारत में आजादी का जश्न मनाने का सबसे अच्छा, सबसे सटीक तरीका प्यारे प्यारे से गाने होते हैं। तो चलिए, जब बात देश की है तो जरा देशभक्ति लाते हैं अपने गानों के माध्यम से। एंजॉय कीजिएगा इस गाने को, यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी खबरों को। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। ये आजाद आवाज यू ही बरकरार रहेगी, तो बस सुनते रहिए।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ो हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता। गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। आर्मरजेन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चलें?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम,
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: मजबूती के लिए बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF Rapid 550D TMT
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।

0: सिरे दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता सटीकता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। आर्मरजैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए। विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, फड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
8: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
6: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी? क्या आपने लगाई पीएनजी?
9: हाँ जी।
10: क्यों जी?
9: क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
10: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप,
10: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
9: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
10: हाँ जी,
9: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
10: नॉन स्टॉप
9: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है पीएनजी।
10: बिल्कुल सही।
9: तो आप भी अपनाओ पीएनजी और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
12: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड एके ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
12: अरे नहीं नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
13: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
14: अरे इसमें क्या है?
13: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
14: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
13: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
14: इनका एड्रेस क्या है?
13: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए

कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 एंड 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, एसएस हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: एसएस हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।

0: सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं। धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।
1: ए दिल तोड़ के।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। आर्मरजेन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
5: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
6: हाँ जी,
5: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस

0: ढूंढते रहो।
1: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
0: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
1: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
0: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
2: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
3: अरे इसमें क्या है?
2: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
3: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
2: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
3: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
2: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
3: इनका एड्रेस क्या है?
2: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF Rapid 550D TMT।
2: मजबूत न

0: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
1: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
0: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
2: अब भिलवाड़ी के शिवो होम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवो हम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
4: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
3: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
4: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
5: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवा दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावरू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता। गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। आर्मरजेन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल

0: इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी। अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी,
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अरे इसमें क्या है? वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था। ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
9: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
1: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
2: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
1: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
3: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
5: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
4: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
5: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
6: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ो हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। आर्मरजेन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध है।

0: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
1: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
0: बोल लल्लनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।

नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर

0: ये श्री दलाएं आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो
6: ये टेंशन भी स्टॉप,
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैसन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैसन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
10: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034-969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए। विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं, आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
6: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी, क्या जी? क्या आपने लगाई पीएनजी?
10: हाँ जी।
9: क्यों जी?
10: क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप, उसको बुकिंग का झंझट स्टॉप,
9: और सेफ्टी
10: की चिंता स्टॉप,
9: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
10: मतलब
9: एक्स्ट्रा खर्चा
10: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
9: हाँ जी,
10: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
9: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी।
10: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है पीएनजी।
9: बिल्कुल सही,
10: तो आप भी अपनाओ पीएनजी
9: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी। टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
11: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड एके ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
11: अरे नहीं नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
12: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
13: अरे इसमें क्या है?
12: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
13: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
12: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
13: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
12: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
13: इनका एड्रेस क्या है?
12: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस। सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
8: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चलें?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए। विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप। मतलब

0: स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, आज आपको बता दे कि शाम का वक्त है तो बहुत ही ढेर सारी न्यूज अपडेट्स भी होंगी, पूरे दिन की बड़ी बड़ी खबरें भी आपको बताऊंगा, देश दुनिया की खबरें आपको बताऊंगा, और इतना ही नहीं भिवाड़ी शहर से जुड़ी बातें भी आपको बताऊंगा, साथ में कुछ बातें स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई बताऊंगा, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इस समय जैन अल्फा जैन जी इनका ही बोलबाला है और यही छाए हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो कहीं पर जैन अल्फा लगा हुआ है तो कहीं पर जैन जी लगा हुआ है, और उनका साथ भी बहुत ढेर सारे लाखों लोग दे रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे कर तो सही रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा, कहां कहां प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से प्रशासन हरकत में है, सारी चीजें आपको बताऊंगा और भी ढेर सारी न्यूज अपडेट्स आपको दूंगा। साथ में दोस्तों, शाम का टाइम है तो यश तो यही कहेगा कि अब भिवाड़ी के अंदर चुनावी माहौल है, जगह जगह पर चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, चाहे फिर वो पार्षद अपने घर पर कर रहे हों या फिर जनता अपने घर पर, मतलब पार्षद जी अपने घर पर कर रहे हैं कि भाई साहब इस बार तो हम ही जीतेंगे, और जनता कर रही है कि भाई साहब इस बार तो कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो वही जो काम कराएगा। क्योंकि हमने खुद जाकर के बाढ़ में बात की है, लोगों से जाना है, समझा है, पूछा है और बाढ़ की दशा को देखा है, जिस तरीके से बाढ़ की दशाएं हैं, जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उस तरीके से लगता है कि इस बार थोड़ा सा समझ करके जनता काम करने वाली है शायद। बहरहाल, यहाँ पर राजनीति को करते हैं थोड़ा सा दूर और अपना मनोरंजन करते हैं भरपूर। तो चलिए, मनोरंजन का है एक ही बहाना, आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश यू गया और यू आ लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चले?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO

तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटो

से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। बड़ा ही प्यारा सा गाना है, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, बड़ी खूबसूरत सी रिक्वेस्ट है। और भाई साहब अगर रिक्वेस्ट की बात की जाए तो ये रिक्वेस्ट आई है बड़े ही दूर से दौड़ते भागते उछलते कूदते फाते मतलब की ये रिक्वेस्ट आई है झांसी से। झांसी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वीरांगना लक्ष्मीबाई जहां पर रहती थी झांसी, झांसी की रानी के नाम से आपने उन्हें बहुत सुना होगा, बहुत ढेर सारे सीरियल्स भी उन पर बने हैं। तो उसी झांसी से रिक्वेस्ट आई है और विजय कुमार जी की ये रिक्वेस्ट है। तो विजय कुमार जी का कहना है कि भाई प्यार इश्क मोहब्बत किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, मुझे भी हो गया है और अब तो सिर्फ

जी हाँ, तो विजय कुमार जी आपकी ये रिक्वेस्ट बड़ी प्यारी सी थी, तो चलिए आपका ये रहा प्यारा सा गाना आपके रेडियो पर, एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। और मेरे जो लाखों प्यारे से लिसनर्स हैं, आप लोगों से भी कहना है कि आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। बस यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मसाक वाली बातें। कहीं मत जाइए, फिलहाल अभी खबरों का सिलसिला भी बाकी है। चलिए लेकर के आता हूँ खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिएगा जी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
7: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
7: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
10: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
9: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
10: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास। बाईपास भिवाड़ी।
9: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
11: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
12: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
11: बोल लालन टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
14: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
15: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
16: हेलो जी, एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो बहुत ही ढेर सारी बातों के साथ आता है, लेकिन भाई साहब अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। तो चलिए एक बाद एक आपको न्यूज अपडेट्स देते रहेंगे, देते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि आखिर अब चल क्या रहा है। तो भाई साहब, अब अगर सबसे पहले बात की जाए सबसे बड़ी खबर की, तो बारिश ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय होने की वजह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में कम दबाव के बाद क्षेत्र और मॉनसूनी सिस्टम के प्रभाव से तेज बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ जैसे हालात की चिंता बढ़ रही है। ये थी खबर मॉनसून वाली। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ है। आखिर क्यों हुआ है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया है। मीडिया की पहुँच और सरकारी स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई है। हंगामा बढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही करीब 21 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। अब बात आ जाती है तीसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, राजस्थान में बारिश का अलर्ट क्यों? राजस्थान के कई हिस्सों में मॉनसून सिस्टम के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जयपुर, भरतपुर, शेखावाटी, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खासकर तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तीन बड़ी खबरें। इसके बाद और भी ढेर सारी बातों को लेकर के आऊँगा, तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसिस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
6: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
9: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
10: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
11: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
12: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
13: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
14: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
13: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
14: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
15: और दोस्तों, एक बार फिर से गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि अब चल रहा है सिलसिला खबरों का, और एक के बाद एक आपको बहुत ही ढेर सारी खबरें मैं बताता जा रहा हूँ। लेकिन अब बात आ जाती है जैन अल्फा प्रोटेस्ट की। जी हाँ, सवाल ये है कि आखिर स्कूलों के बच्चे क्यों उतर रहे हैं सड़कों पर। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त RJ यश, और आज की खास रिपोर्ट में बात उस बदलाव की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। स्कूल के बच्चे हाथों में पोस्टर, सड़कों पर मार्च और प्रशासन के सामने अपनी मांगे, इसे अब कई जगहों पर जैन अल्फा प्रोटेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर बच्चे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से उठी आवाज। उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर, लखनऊ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जैसे इलाकों में छात्रों ने अलग अलग स्थानीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। कहीं स्कूल में शिक्षकों और सुविधाओं की कमी का मुद्दा है, तो कहीं सड़क परिवहन और स्कूल के आसपास की समस्याएं बच्चों के प्रदर्शन की वजह बनी है। कुछ जगहों पर छात्रों ने स्कूल से मार्च निकाला, सड़क पर प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाई। लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही, बात मध्य प्रदेश तक भी पहुंची है। मध्य प्रदेश में भी छात्रों का विरोध जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन में भी छात्रों के प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। यहां छात्रों की चिंता अपने स्कूलों के भविष्य और उन्हें दूसरी व्यवस्था में शामिल किए जाने या स्थानांतरित किए जाने से जुड़ी थी। और अब राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में भी आवाज लगातार उठ रही है। राजस्थान समेत बिहार और महाराष्ट्र में भी शिक्षा और स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों के प्रदर्शन सामने आए हैं। इनकी मांगों में बेहतर स्कूल सुविधाएं, शिक्षक, पानी, शौचालय, पंखे, सड़क और सुरक्षित माहौल जैसे बुनियादी मुद्दे शामिल रहे। प्रदर्शन का तरीका भी बदल चुका है। इन बच्चों के प्रदर्शन की खास बात यह है कि वो सिर्फ शिकायत करने तक सीमित नहीं रहे। कहीं पोस्टर बैनर, कहीं नारे, तो कहीं मार्च और धरना, बच्चे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, ये थी आरजी यश की खास बात। ये आंदोलन किसी एक जगह या मुद्दे तक सीमित नहीं दिखता। अलग अलग इलाकों में बच्चों की समस्याएं अलग हैं, लेकिन संदेश लगभग एक है। हमें बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर सुविधाएं चाहिए और हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि जैन अल्फा सड़कों पर क्यों है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या बच्चों की इन आवाजों के बाद स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में बदलाव आएगा। जी हाँ, मैं था आपका दोस्त आरजी यश और आप सुन रहे थे हमारी खास रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग ही अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीजिए हमारे साथ। क्या आपको लगता है जैन अल्फा के सड़कों पर उतरने से माहौल में सुधार हो सकता है, स्कूल व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है, शिक्षकों की भर्ती हो सकती है या फिर सड़कों की सुविधाएं भी हो सकती हैं, सड़कें सुधर सकती हैं या नहीं? अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8432665588 पर। तो बस फोन उठाइए, कॉल लगाइए। मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मसाक वाली बातें। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
10: क्यों जी?
9: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
10: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप,
10: और गैस खत्म हुई तो
9: ये टेंशन भी स्टॉप।
10: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
9: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
10: हाँ जी
9: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
10: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
10: बिल्कुल सही।
9: तो आप भी अपनाओ PNG
10: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
12: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या, खर्चे ही खर्चे।
12: अरे नहीं नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
13: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
14: अरे इसमें क्या है?
13: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
14: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
13: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
14: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
13: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
14: इनका एड्रेस क्या है?
13: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
15: हाँ जी भाई साहब, एक बार फिर से गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब बात कुछ ऐसी है कि एक टाइम पर थोड़ी सी मस्ती और मजाक वाली बातें भी मैं लेकर के आ जाता हूँ। और आपको तो पता है कि जब मैं मस्ती और मजाक के मूड में होता हूँ तो मेरा साथ कौन देते हैं? अरे सबको पता है कि मेरा साथ देते हैं।
16: अरे अंकल अंकल, सबको बताया, सब मुझे भूल तो नहीं गए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने चुटकुला सुनाया नहीं ना। भूले तो नहीं।
15: अरे चिंटू बेटे, आपको कैसे लोग भूल सकते हैं, मुझे ये बताओ। नहीं भूल सकते बेटे। चलो अच्छा आज बताओ क्या सुनाने वाले हो पति और पत्नी को छोड़ करके।
16: अरे अंकल अंकल, पति और पत्नी को कैसे छोड़ा सकते हैं, पति और पत्नी का तो पवित्र रिश्ता होता है।
15: अरे वाह चिंटू बेटे, बड़े समझदार होके आए उस बार तो। क्या बात है, इतने दिनों में यही सब कोचिंग लेते रहे क्या?
16: अरे अंकल अंकल, नहीं नहीं, मतलब मेरे पास चुटकुला तो पति और पत्नी का ही है, लेकिन अच्छा है। हाँ, मजा आएगा मजा आएगा, सुनाऊँ क्या।
15: अच्छा ठीक है फिर सुना ही दो।
16: अंकल अंकल, बात कुछ ऐसी है कि पति ने अपने पत्नी को मैसेज किया कि आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो ना अच्छा सा खाना बनाना। हाँ
15: अच्छा, फिर पत्नी ने क्या बोला चिंटू?
16: फिर क्या, पत्नी का कोई जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं किया पत्नी ने।
15: अरे ऐसा क्यों, फिर पति ने क्या किया?
16: फिर क्या अंकल, पति ने दूसरा मैसेज किया कि मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, अगले महीने तो मैं सोने की अंगूठी ला कर दूंगा।
15: तो फिर?
16: फिर क्या अंकल, पत्नी ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, ओ माय गॉड, सच्ची।
15: तो फिर पति क्या बोला?
16: तो फिर क्या अंकल, पति बोला नहीं नहीं पागल, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं, वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज ही नहीं मिला, खाना कैसे बनाती, बड़ी आई।
15: क्या बात है चिंटू बेटे, मतलब ठीक है यार, तुम्हारा हाल बेहाल है, समझ ही नहीं आता कहाँ से कैसी क्या बातें लेकर के आते हो। पर हाल ये था चिंटू भाई का चुटकुला, जैसा भी लगा हो हमें जरूर बताइए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8432666588। और हमें ये भी बताइए चिंटू भाई से, आप लोगों का बात करने का मन होता है या नहीं, जरूर करवाएंगे आप लोगों की बात भी। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस गाने को, मैं शो गया और यू आए लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, बात कुछ ऐसे है कि अब हमारा और आपका सफर यहीं तक का था। वैसे तो ना तो मुझे इसका इंतजार था ना आपको होगा, लेकिन फिर भी घड़ी ने अल्टीमेट दे दिया है। घड़ी का टाइम हो चुका है, घड़ी ने अलार्म बचा दिया है कि बेटे अब आप जा सकते हो, बहुत टाइम हो गया, अब जाकर के खाना पीना खाओ, रेस्ट करो, कल फिर से आना है सुबह सुबह। लेकिन आज आपको बता दें कि हमने बहुत ही ढेर सारी बातें की, चाहे वो छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी हो, चाहे वो मौसम से जुड़ी हो, चाहे वो और भी ढेर सारी राजनीति वाली खबरें हो। बहुत ही ढेर सारी बातें आपको बताई है, बहुत ही ढेर सारी बातें हमने की है। साथ में चिंटू भाई भी आए थे, चुटकुला भी उन्होंने सुनाया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा, हंसते हंसाते खेलते खिलाते आपका सफर कट गया होगा, आप ऑफिस से घर तक बड़े आराम से प्यार से पहुंच गए होंगे। तो चलिए फिलहाल यश तो यही कहेगा, इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खान पान पर ध्यान रखिए और साथ में चुनावी माहौल है तो उसमें भी जरा सा मजा लेते रहिए क्योंकि चुनाव भी तो एक ऐसी चीज होती है जिसमें मजे आते हैं। लोग आपके घर पर, आप लोगों के घर पर, और दोनों में बड़ी तानाशाही चलती है कि भाई साहब वो वोट मांगते हैं, आप मना करते हैं, आप काम के लिए कहते हैं, वो काम करवाते नहीं है। बहुत ही ढेर सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत ही ढेर सारी ऐसी फनी चीजें निकल करके चुनाव में सामने आती है। तो चले उसका भी मजा लेते रहिए, लेकिन फिलहाल यश जाते जाते अब यही मैसेज देगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए, फैमिली वालों के लिए भी, खुद के लिए भी। चलिए टाटा बाबा, ठीक केयर भवाड़ी, मिलता हूँ कल फिर लेकर के कुछ और नई बातें। टाटा बाबा, ठीक केयर।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसिस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
9: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
8: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
9: अभी मैसन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
8: मैसन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
10: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
8: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
11: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
8: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
11: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
8: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
12: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
6: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
6: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
9: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
8: बोल लल्लन टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
10: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
11: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
12: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
13: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
8: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
2: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
5: भी स्टॉप,
6: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं

0: एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपी सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
2: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
1: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
2: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
3: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्री राम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां, मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम।

0: से काफी कम,
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
4: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान, तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
7: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
11: हाँ जी।
12: क्यों जी?
11: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
12: और सेफ्टी
11: की चिंता स्टॉप,
12: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
11: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
12: हाँ जी,
11: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
14: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
14: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
15: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
16: अरे इसमें क्या है?
15: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
16: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
15: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
16: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
15: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
16: इनका एड्रेस क्या है?
15: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
17: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
5: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
6: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
5: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसालाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ो हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड

0: Ultrasound, color Doppler digital X-ray DR, TMT, EEG व fully computerized pathology lab प्रतिदिन उपलब्ध है।
1: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
0: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
2: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
3: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डो में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। संबंधित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चलें?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
2: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
3: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
4: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
5: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
8: मतलब
7: एक्स्ट्रा खर्चा
8: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
7: हाँ जी,
8: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कांटेक्ट करें। OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।

0: करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं उन्हें वोटों के रूप में

0: आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
2: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
2: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर, डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co. .in आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूं। जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चलें?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए। विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर केजी का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CB SBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां, मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: Classic MJ. नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी

0: शोरूम पर जाएं, नियम बशर्ते लागू।
1: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPD, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं अमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9-9830-40100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: कि आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो
6: ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034-96-9731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें, उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूं। जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल ललंकार, CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
3: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्स

0: और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
1: खंडेलवाल एजेंसीज NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप,
7: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ लेना, ए I'm one in a million, पर ज्यादा भी उछलेना। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी

0: അരെ കൂട്ട മിസ് വേഗ
1: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
3: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
4: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
5: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
4: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
6: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
7: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
8: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
7: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
8: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
9: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ो हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MT रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। Armorzen, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूं। जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल

0: क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
1: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
2: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, वोक, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
2: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
1: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
3: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए। विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
8: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी,
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अरे इसमें क्या है? वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था। ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
9: इनका एड्रेस क्या है? इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM, 44 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: और कोई उम्मीद मत रखना बद्री।
8: उम्मीद पे तो आशिकी का है ना।